टेकिया बटियाइया किसका ना कहना जा सोकता कादर करीम दे जी आर जगसंबाए साई कार कमाउनी तो छोड़ी।

ओदावे वाहेगुरु गावे ते ओए दावे सोने ते ओदावे वाहेगुरु बिन से पाप घनेरे बिन से पाप घनेरे सचिया पाठ जा बिन से पाप घनेरे पैसी परे मगे कोई तारे वाहेगुरु पैसी परे मगे।

रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूप्रत भान तस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड।

गिरे हरी गुफे हरी छते हरी नफे हरी इहां हरी उहां हरी जमी हरी जमा हरी अले खरी अभे खरी अदो खरी अद्व खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि।

वेद वेद यौकते विनीत नीत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा सीतर न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु कित वेद यो पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोन दीप तार कित अश्वनी कुमार कित अंशावतार कित काल बस भय है। वीर यो पिकम्बर कित गने न परत इत भूमि हित विक फिर भूमि ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप औदलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तोप चीक पट बेश पोसती अनेक दानी वावत है। शीस कौ कहा भयो मल्ल जो पिकाढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कौ कहा भयो रोगी जो पिडारो रहे उर्ध मुख मन ते न मुंड ने होरायो आदेश कौ कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कौ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेड़ पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा मन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जो किया बैरागी बन कब हूँ संन्यास बेस बन कह दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोकन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की तर पुकारे पर शीतकाल गुंचर ओगा तहा

करीम सोए राज करहिम ओए दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो एक ही के सेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओए मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देश।

एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते ऊन को करत फच, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नभ बीजे अच पच को करेंगे बज, के तक प्रता चोहे पचाए खाए जाहेंगे।

तेज में अतेज जैसे तेज लेन ताही ते उपज सब ताही में समाहिंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बास कित मदिना मकानी वासी कितक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुवा पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चौहार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी। गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सतरंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सतरंग न भामंग लेखंग बेखंग जो निस

न कर्म न वर्म न जन्म न जातंग अद्वै खंग वे खंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदंग छयाद अद्वया विनाशी न जातंग न बातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे।

मंडे प्रचंडे ब्रह्माथे न जाते न पाते न सत्र न वित्र सुभूते भविखे भवान अचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग अपेखं न सत्रंग न वितरंग न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनिर्भिखादं अछेदंग वेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहं न गेहं न परमं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक

ंग सोकंग साकं परे अंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग न जातंग न वितरंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरम के न भरमंग न चरमंग न कर्मंग न बाके न सतरंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो वाद रूपे नमो वाद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजता में

सर्वभूपं कहूँ नेह ग्रहं कहूँ देह दोखं कहूँ औखधि रोग के शोक सोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात गीता मसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हो कहूँ राज

कई यगन होत्र कई पौ नहार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भाच नहीं तदब देव हो पद प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम गहूं अगन होत्र कहूं तीरथ धरम कई देश देश बाकार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत पांत बांतन विचार नहीं नैकता सपायत न पार कई तीरथ तीरथ बरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपायत न पार कहूं राजरीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्योली याद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मुख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरत चार कहूं करत जाच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घदान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र स्मृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बव करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व

जय जंपह जो कण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुवंग तप ताप सर्व जलेर थलंथन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद अनखेद स्वरूपा भेद भयंगन खंड अभूता छेद छयंगन काल अपाल दयाल सुवंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंजे रचयंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रचयंग छत्री छत्र चितंग जे राग न रेख न रोक भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जे अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज क्यो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव बेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत जोद भुजंग किये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जाछ जुअंग नर नार नपुंसक जाय किए गण

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है नराग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दग दग है अभूत ब्रह्म फेक है न दात मात जात है न पाद चिहन वरण है अदेक शेख फेक है सदैव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमे जमान के विकह सदैव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदैव सर्वठौर मैं विशेख आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण या कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइये गंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है वली रूप राग रंग है न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है।

गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा अगस्त आदि जे बडे तपस्तपे विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखी है अगाध आदि देव की नाद बात मानी है नजात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है सदीव सर्वलोक।

देव भेव न जानहि जे मरम वेद कतेब सन कहो सन के संदन पावहि न हसे जाछ किन्नर माछ मास मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकारहि शिव सकरो मुख चार सर्व सपद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाद तेजा नाद मूरत अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धिराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैसनंगे बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल

सोत सोत हटे सभ दुर्विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव गढ़त गाड़ अनंत हार हार कहे सब मिलन।

दीन बंद प्रवीण सरीब सर्प को करतार बरन चहन न चक्र जा को चक्र चहना कार जात बात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर

देव गंधर्व किन्नर मच्छ कछ अपार भूमका जले थले मेहमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता।

नारद आदक वेद व्यास गमुन महान अनंत ध्याय ध्याय धके सब कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोद सोद थके महासुर।

कहां रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोकी रागी कवन कहो तत्व है दवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो।

दुर्जंदल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रत्ये चरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय ओसे मैं खासुर मर्दन रंभक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

डावरूट वंगे बबर बवंगे मुजाफर अंगे तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके असज चमके फुंक फनंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामने दमंकन धुजा परंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दा थे दामने प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकार।

चाचर चमकारं छुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी वृदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय उसी मखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरम ध्वजे गुंगुरु गमंकण सहस्र मंकण फणियर फुंकारण धरम ध्वजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय उसी मखा सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहन बितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नदम उदारण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख तहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी शस्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामने दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोजन गौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुप्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आद अनाथ अगाधोर्धन घंट का विराजे रुण झुन बाजे भ्रम भय बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग बाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंदन रिज सब न भजे रोह रणंग जय जय होशी मै खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर प्रते धुमराज विदुंसन प्रलय प्रचुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होशी मै खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदानंगी अगाध गते ब्रिडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय उसी मैं खा सुर मर्दन विश्व विदुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाश उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकार खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर खण बितल तले अष्टायत बाहन बोलने वाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय होशी मै खा सुर मर्दन आद नाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय होशी मै खा सुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुगडुकी दमंके बाघ भवंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय होशी मै खा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे

रक्ता सुरमर्दन चंड चक्र दंदन वर्णन विदाल बधे सरधार विपरखंड दुर्जन धड़कन अतुल अमरखंड धरम दुजे धूमराज विदुन संस।

अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साध जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन अभेक कहे नाम ताज है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल तल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीना न दोग दहता उतार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारक नीमन गारे पश पशु नक नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार है पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमावत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो कुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंगमेव न भेव लख्यो भ्रमस्यो भरमाए वेद पुराण गतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सु किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध तवे सो भूत भविख भवान भय है अंत विहीन अनाथ मापद अगाध दुख अचिद्र छह है लोगन के करता हरता जल मै दल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह छह है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लाग न पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप संभूहन भेट न पावे और की बात कहा कहे तो सो सो भेट ही केवट बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसादर जाच भुजंग सब सिरन्यावे पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ ना आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो भेद कतेव न भेद लखेव सब हार परे हर हाथ ना आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद रिपान सब बचहारे भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे आद नाथ अगाध बेगत वैग जप्य उतनी ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश विरो कर भेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल

अत्र के चलैया छेद छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार बाबा हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जो कि जोग साधे पौन साधना की तेक बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कूरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माग दे सके मंगेले फिर भंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस न्यावे ते पति थे आये दुख दे के दलत है। जिन्हें दोहे धायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे बहु जातता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कित इंद्र द्वार कित्य ब्रह्मा मुख चार कित्य कृष्णा अवतार कित्य राम कहियत है। कित्य शस्त्रासी कित्य सूरज प्रकाश कित्य मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कित्य महाधीन कित्य व्यास प्रवीण कित्य कुमेर कुलीन कित्य जाच कहियत है। करते है विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइय न पार भय पार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह के मानी है। जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अन मानी है। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूं बता रहे के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की हान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपनों को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है। को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलब विद्या पूर्वी न पार पावे सत्य अनाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वे अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम चाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाच कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब कालिंद्र के कूल के। हंस निशि हरो मही रसी हो सना बाद गंगा कैसी धार चली सतो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़ गिरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है।
चंदन से चंपावती, चंद्रमा से चंद्रगिर, चांदनी से चंदगढ़, जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार, बकान से बिलंदवाद, कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी, फरासी के दुरंगी, मकरान के मृतंगी, तेरे गीत गायत है। फकरी कंधारी, गोर गखरी, गर्दे जचारी, पौन के आहारी, तेरो नाम दयायत है। पूरब पलाऊ, काम रूप कमाऊ, सर्व ठौर मैं विराज, जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप, चंद्र मंत्र दया तापी नाथ की।

चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव शुभम सदास दुकालम प्रणासी दयालम स्वरूप सदा अंग संगे अपहंगम देखते गो फतेह सुदेत अजनान गुरु गोविंद सिंह जी सरकार पुरख जी सा दरबार तुर दरबार सतखंड वसे लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार सर्व देख गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अब चल नगरी अपार सतखंड

मंगते गिड़ मुड़ पुरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े।